0: महला पहला जे मुहाका कर मोहे पितरी दे अगे वस समझाणी है पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नान के अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोरू सरना अमड़ी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसे नितन तो होए खुआ सुचे ए ना आखिए वेंजे पिंडा धोई सुचे सही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी
2: ਮਹਿਲ ਮੰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडिया साधी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जले कै वरते सो महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कूड़िया थाए न काई पाए पौड़ी जित से।

0: गल्ला करे कनेरिया खजम ना पाए सार आप गवाए आप गवाए सेवा करे ताकि छपाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण भला दूजा
1: जो जी होए सो गए मुह का कया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत बेखू न्याओ महला दूजा हरियाणे दोषती कदे ना वे रास जे हा जाने ते होवरते बेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पार साहिब सेती हुक्म ना चल।

होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां, हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छगिया, देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया, चर खड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथे आरियात, देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय, खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान, बबेक दान विसाहा दान परोसा दान, दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान, चौंकिया झंडे बोंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्चे, मत पत दा राखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे नमानिया दे मान, नतानिया दे तान, नियोटिया दी ओटा, तान तान श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे हजूर सबद चौंके, आसा दीवार दे भोग जी की अरदास, भुल चुक मुआफ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद चक चिहन यर बरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहि सहन गणिजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने भय ओतहि समसर सोई तरन गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहे ओ पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर मेल लहो दयाल टह पय द्वारिया रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत वशल तेरा बिरद हार पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहे सारिया कर गहले हो दयाल सागर संसारिया लिख कत है ना छूटी खिन खिन भूलन हार बखसनहार बखसले नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमदी नूर अर सहो कुरसोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गोरपुर वाज अनहद तूर सर्व कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने

वाज अनहद तूर सर्व कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। वेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरस होए।

जो मंग है सो ले रहे प्रभ अपनिया संतां देव हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक सच सो पखिया जो मंगह सो ले वहे।

जन नानक सच सो पाखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने।

पंच सूर वीर ऐसो कौन बलि रे। बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरसा पातशाहो निहचल चौर छत पौड़ी बड़ी वड्डा।

चंदन चंद ना सर्द रुत मूल न मिट ही का शीतल थी वे नान का जपंदड़ो हर ना।

पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरा वस तेरा कर पला तेरा कर नंद वदाई तुद कर मान मता तेजे अपना आप जर सर्व कला पर पूर दिसे जत कता ना।

रब सस जोत अदोत लंग परम जोत परमेश्वर प्यारा जगमग जोत नरंतरी जग जीवन जग जय जयकारा। नमस्कार संसार विच

काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दोराई सुख शीतल सिरदा सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खन पीतर महिमा कथन न जाई निरपव पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस।

दिवस रात दो दाई पौड़ी वड्डी हो वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद बधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना बजर सर्व कला भरपूर दिस जत कता

शैल पत्थर मह जंत उपाई ताकारिजक आज्ञा कर तरिया। मेरी माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भउ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरी शरिया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धा।

सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया, जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाणै, हर गुण सद ही आख वखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पैले निवासा। पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबियाले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

यार सह कोर सह चटिया तुद डिठे सचे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तना श्री

सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एकै, माने विश्वास।

मन मने सुख हो। हर का नाम हृदय नित ध्याय, संगी साथे सगल तराय। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले।

पौड़ी वडे हो वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरा वास तेरा कर पला तेरा कर नंद वदाए तुद कर मान महता ते

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन

दिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर लाभ दिवायो।

0: नानक सतसंगा सतसंगा।
1: श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद।

0: सगल्या पो लिखिया सिरलेख नानक निरपो निरंकार सच एक महला पहला।
1: नानक निरपो निरंकार हुर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचै मंगते गड़मुड़ पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे राणिया बोले आल पताल। लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पाईए नानका सेतन होवै शार। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार करम मिले तो पाईए होर एक मत हुक्म खुवार पौड़ी नदर करे।

खेता दीपालोआ मंडला खंडावर पंडा अंडा जेरज उत्पुजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना

0: सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माखे ओ कूड़ डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सटता प्रजानिया जे हृदय सचा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे छत होए, सटता प्रजानिया जे सच तरे प्यार, नाउ सुन मारे सिया तपाई मुख द्वार,

파테 सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत मालनासी सतगुर चरण कवल रिद तारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं।

0: अर्जुन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
1: जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताक्षर दे गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो प्रताक्षर दे गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
2: अजय गंग जल टल सिख संगत समरावे नित प्राण बचे वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टोले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हरि वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे सिर गुर मोयो हरि वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे सिर गुर मोयो।
3: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात बिदे मन दर्स मग पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
4: पै निरपो मान्यो राख में रख दखायो अगम गोचर गत गंभीर सतगुर

तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जनम जनम दी कट्टी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर साहां साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अका